ए ओ ओम चिलोरी।

পোতারা রানী বংশের হান।

0: Te cardegri que alamdir.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा, वहीं महिला

डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में

0: 55वें मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289-0940-44 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग

0: ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जाँच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आज़ादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी।

वर्षा के मी चुएंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलोंग आसन आसन कपचे थांग वर्षाई दो लबांग सुंग बोंग माई मीटिंग पांगरीपांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कपरेक आसन आसन अलम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलोंग नंग हुमरी इक्तमी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मनीता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। खम तो आमार धान खेती भालू खेती नष्ट है। नष्ट होले तो जो पैसा दे तेनाली आमार लाभ है। बाकी खेतियों के कोले तेलुको लाभ तो पाबो। हे कारणे आमी जनगान पालू
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहिते जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144 47 लई कॉल करक।

इब्राहिम अश्क का कलाम आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। मोहब्बत इस एल्बम से इसे लिया भूपिंदर सिंह का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। वाणी जयराम की आवाज में सुनते हैं ये गजल और इसे परवाज एल्बम से हमने लिया है। दानिश बरेलवी ने इसे लिखा, मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: शमीम जयपुरी का यह कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सैगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सैगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सैगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने। और

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत यशदास और हेमलता की आवाजें।
1: बैठ जा,
2: बैठ
1: खड़ी हो जा,
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल धयानवी के बोल, खयाम की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।

0: अपैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा
4: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ज्वेल थी। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती के का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार

पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे, न झूठी मुस्कान धरो। भले न रखो अभिमान, पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने, और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है, और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी, फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो, कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे, न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें, हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कहने कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे एक साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो, बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए, www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है, तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं, देवनागरी में लिखा है ये, और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

0: फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं? आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं, कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरह से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूं। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है? हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर उसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और जरूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी, तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज की भारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं? तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस खास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे, ये हमें बताइए। और तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का, अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता

जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नज़र आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूं उससे। और हमारे साथी कहती हैं कि 4 दिन की जिंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहां ठीक है जहां रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है। इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी एक और साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों, ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है, मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी अपने रास्ते पर चलना आजादी है। और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाए, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाए। फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज? हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता, क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है। और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर

जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत। आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं। और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपके लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम, और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने?

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लिए जिए, अब अपने लिए जिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं, और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है। उम्र दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही हैं कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे। कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे एक साथी कहने की लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं, अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें, न खुद दुखी हों। ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है। नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं। तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत, जिसमें बात है कुछ ऐसी ही। और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया, और अब अपना सेकंड फेज यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निके निके से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटे से ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। भाई ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शमी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है तो वो क्या है, हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज की भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नज़र में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं। हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि

तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें, और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी ना कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन में क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार

और जीना चाहती हूँ जहाँ हर पल बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीज़ें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता।

या अपने आप ही 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई नई और फिल्मी, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है, और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते हैं कोई गीत गा रहे हैं तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही आपने अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वही हमारे एक और साथी कहते हैं, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंख हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूं। भाई क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन के कब करेंगे हम, अपने मन की बात नहीं कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों क्या का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिएं। और एक और साथी का

कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन का स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं। और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: helped them gain control of the match. Later in the day, former world champion and 9 seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland in the women's singles. Meanwhile, the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Sethi will face world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 183 for 5 in their first innings against India on day 3 at the opening test of the series at the Gaal International Stadium when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Vikasit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham Temple in Bihar. 5 people killed in a fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 184 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Gaal. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun Hariharan Amsakarunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसकरुन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: भारतीय बैंक इस समय मजबूत हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
3: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां

0: वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है, अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली

0: बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4

0: और 1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोवा में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज, तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

0: मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपिन नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नग में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत, फिल्म पेइंग गेस्ट, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: मस्ताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम किया जाए।
0: और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है, क्योंकि आज 73 भाग 2 आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूर दम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि क्या आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल।
0: और आप क्या करें,
1: बाहर तो आज बारिश हो रही
0: है झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक सी संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महाअनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कल मुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित

पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी से बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जब ही तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला।
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या, मुझे पागल समझती है तू है? पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही हैं। भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों

0: की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
1: बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, ना बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
0: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: अम्मा ये सब ढकोसला है, 3-3 लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
0: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ,
1: अरे
2: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया।
3: अरे आ गया, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
1: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचोगे, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान।
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत।
1: हाय अरे बेटा भगवान साहब करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूं।
1: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अब अच्छा हुआ मेरे सिर गई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम।
1: अरे कहाँ जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, 10-20 वो भी ले जाएगा मेरा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ बेटा,

0: बैठकर भागवत पढ़ो, अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम, अब ना बचूंगी। पढ़ो पढ़ो बाचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ कह देती हूँ।
1: तेतर तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
2: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा, नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता, राम राम। अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है, तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर, खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
3: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो मां के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
2: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
0: अरे बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है? भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना, अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? हाय बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी, अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है बड़ा दर्द है भैया।
3: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
4: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
5: हाँ हाँ सही कहती हो, तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तेतर ना दे।
3: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
6: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।

0: कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
2: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्यौहार मन रहा है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्यौहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुनाली, नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नाग पंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना, नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना, ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
2: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नाग पंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
2: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद।
1: जी।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी सहेली,
0: और अब एक गीत सुन ले।
1: चलिए।
0: सदा

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नागपंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका
0: पालन
1: कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें यानी ये जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन देखो ना आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या कहीं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ

0: को बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
1: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में, और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
0: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना, और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
1: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: बच्चे हैं, और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना, तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों के पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है, तो वो तो उन्हें इजी है और चटपटा स्वादिष्ट है।
0: चटपटा स्वाद है, और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
1: कितना
0: अच्छा है।
1: और फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो,
0: ऐसा क्यों करते हो। बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है,
1: या फिर ना के बराबर होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के द्वारा जा रहा है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
1: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना,
0: बिल्कुल सही
1: कहा। आजकल के बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है, हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाता है।
0: सोनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं, जहां छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
1: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए,
0: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार।
1: लपाना पाना ने तुम मुंबई पे न पिटाक पन विविध भारतीय जाम में आरजे लोंग तंगला लाके आकाशवाणी रिपो नॉन स्टूडियो घुरी आने का संपर्क पाए तमरा मिनट प्ले कर पो प्लेंग तंगला लसे नॉन नाला तुम आरजे लोंग पो गुवाहाटी स्टेशन कर बियांग लेंग लपेन पाए तक पन आसान आसान कर बिया जाम में।

बर' लिरमेलुनो जाम्बेक लंपेन आदोन्थुलुन आथिखसिनां सुलेन बसुमतारि जायथा सुलेन सरगियारि लापेन खानस्रि रामसारि आथोम किलोनलान आलोन लामथे लाके आंनि गोसो

बर' लुन लिरमे जामे लंपेन के पादुसिया लुन आर्जुक सेना सुलेन बसुम जर्गियारि लापेन कानस्री रामसारिया जेपेन लुन जिथा आलन लामते आं जाबाय आजेउला।

0: उसे तो मैं नीलिबांग सी का शिक्षक दा कि दो और लाइन का शिक्षक हाय लो है मसी के दम ता मंगे थे तेलो से मैंने फ्राम मंगे दा कि फुलोंग बुकुलिया लोंगसन दे दोमुका पेंपु दोंग व्यास बांग के हम रेना सन लसोनो म कि बिजी पान सिनिंग हांग लो है तो मैं नॉर्मली जुंग जुंग मंग अवर साइ पान अवेलांग से मैं अभी दिनों सी लांग बम ला तो मैं निहांग मांगे दुलु लालो
1: मैं पिघला इले तुम आहावाड़ों के चेक मते रिसोर्स पंगे दो एक उलो दे और फिर से तमे नॉनल ये सन सन क्लेम अ बिदी लाहे सन क्लेम पन लोते लाना ली लोंग जी पुल हाय बंगे अनथेक दम एक लोंग लेला लसे नाली हेन पेन कोपिने थान पन एक जे सन दो एक मा थान
0: लालो ला चेक पेना सोना सोन कसोन से कि थेक तुम फान मानि ता थेक थिसतांग ता चली लांग सतामे कि थेक तांग नंग के क्लेम बम तुम दो प्रोतांग ते हेलो आ मार्केट मते आ बाजार बांग आ हि थी बांग लिता चीनी ओ एसे तमे सब सब के चीनी न प्री फ्रलो है माने क्लेम लो प्रोतांग ते लितुम आ सब इनिंग दिमांग दोनंग जी जदा सोन से तमे सोन था सोन लिनि दा सो आ साइ ता क्लेम निंग कान के प्री फोदो पोनो क्लेम इनिंग कि दिंग हासो बांग लिता ला आन इनिंग माने सोनो पो नो नो सोन बांग चीनी जी पानांग देंग लेजी पानी निंग अवे थनी लिबांग के क्लेम के क्लेम के क्लेम क्लेम सेम नोन बांग बांग तुम ना चिन लो जे पेन तुम चिन लो जे लासो पुथक पेन आन थेक लुप से चिन है सो था सिक माने के क्लेम थे बांग दुप तांते नले तुम निली फाना कोन ते गय निली आही छी मते आ मार्केट बानि नांग जापन पो न पेन आ मार्केट बांग के न मा काची थी साइड देलु निली फानता कोसो न न नाचिंग से ग्रीन लसो निली फाने माने पुलु मा क्लेन पुलु मा हेल मा किम नेंग सो फालो मानसन को पिना थ्री कप दे ना तुम दा कोमन यंग सी क्लेम थे बांग दु पता निली फानांग चिंग किनो निली आ हि थी बांग थान पिदुन पो लपेना बिदी बांग थानुन पो आ बजार थान पिदुन पो लालो लपेना तुम मांग के क्लेम बांग माने सोना निंग दिंग नंग जी इरी नंग ने क्लेम थेब नंग पो पिनी लोंग ले सेता पेन आप के लोंग जी के सोन थाग लो माने
1: कला
0: निंग दिंग नंग पो माने नॉन इन दैट फान माने फान पीमा आना लोंग दैट बाकी दी लाते निंग ओय ने ला फान दे ले अ कस्टमर कली दी ए फ्रांग अलेंग दोलांग वांगला दी सोन थाग सी निंग चपन निंग दिंग नंग पो लालो तांग ते आंसु से ता रेंग उन पु ला पेन लोक ता इतुम काई रेंग ही फान के उन
1: चोर पर पिकला तंते तेरो ना के हाय पिनिले तुम चेक पेना सन सन कसलम अलम थे लपेन कि उप मते ट्रीटमेंट से तमे कोसन सी पीपल नंग जी मापो ला हेलम थे से तमे नंग लिहन पेन थान पकलर पोन एकलो लपेन नंग नि फान चोरो एकलो लसे पिनि का पोड के चो एकलो पोल सी लितम चिंकी से थान अलम थे के लपोन पोन एंग टोन पोन एकलो ना पुथत नंग लि फान से तमे मोके बांग जी अरनी ताल अंथ से अथक कालुदन थेक जी फान आर नाम ले अहेर जे मेना पपिदन इबम लो ना पुथत नंग लि फान सुरी सुरी कार्डम न पजे एकलो कार्डम
0: काढो चोरलो
2: रोग रोप जा मेघ लो लापाना पढ़ना ने तुम चेक पेना सन सन हर मुहरदार कि बुआ पुठा आके है आतुर चंद्र लापेन होट बांग हार बवन रंग बियांग बंग जीव जीपोट आर जुग लंग दंग लापान से रोग रोप जा मेघ कंगतल लो लाके आकाशवाणी रिपो नॉन आर जुग से नंग पिनी असार लमठे पिनी असार लमठे के चिरी बसा कचे हंग मते पिजो पेन का पाउन पो पान से पुदम लमथे के मान चिरी पुके आरोंग का पेक अथेंग पी आदुंग से आरोंग वांग पो पिजो पेन पकड़ थे मते पकुम पोंग पो आरोम से चिबी कोकते थे काय नो अमुनि ले के मे चक्रों पेन बांग हेम किदुन मते आरोंग अलोंग कचे था दुन पो पान से के पुदम लादाख बासा बुके मलम सो पर के सेंगा देवा पान से के पुदम लासे कार्बि तुम सार पलम थे लो चिरि बसा कजहांग माते पिजो पेन कपाउन पिनिया सारम थे के लपान भेल लो

वर्षाकी मी चेन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थैंग वर साइडो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेन की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थैंग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजोंग सी चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

आदन तु लता मंगेशकर लापेन भूपिंदर से पेंदे गजल आलन आर्जुक सिनांग आलुन लामते दिल धुनुता है।

आदन्थु आसामे सालन जा मेगलों पेन विजय भैया किलना लोन आर्जुक सिना आदन लामते दुखेरे भरा।

आसामी सलोनी जा मैके ला पांच ही कंतो निकलो लक आकाशवाणी टिफो नॉन आर्जुक से ना ऑक प्राण ना जाए मैक ऑक प्राण जाए मैक ला नॉन आर्जुक लोग पो कैंसर के सुअ फुटा डॉक्टर रेंगमिर सो रोहंग पी लपेन हुडबांग सिंकान के मिंग दिपियंग पोंग चेहु चिफुट

इंग्लिश लोन जा मेगलोंग पेन के पारुसिया लोन आजुक सनांग द कॉर्स किलोन अलोन नामते डोंट से यू लव मी.

0: से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों

0: सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
3: घर घर तिरंगा, इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और

0: सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केंदुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178 runs.